हर सरने आयो दास तेरा प्रभु ऊच गम मुरार काड ले हो पौजल बिखम ते जन नानक सद बलहार माली गोड़ा मोहल्ला पांजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वशल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंत मद तू है प्रभ बिना नाही कोय पूर रहया सगल मंडला एक स्वामी सोय करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन धन ओ राम बेन बाजे मदर मदर तुन अन हत गाज रहाओ तन तन मेघा रो महावली तन तन कृष्ण ओडे कांबली तन तन तू माता देव की जय ग्रह रमैया कवला पति तन तन बन खंड बिंद राबना जय खेले श्री नारायणा बीन बजावे गोदन चरे नामे का स्वामी आनंद करे मेरो बाप माधो तू तन के सो साम लियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बेकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अम्बरले तो उभारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बोना नारे अथावर जंगम कीट पतंगम काट काट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे परुणे नामा पहने कामा कोठा कर को दासा रे राग मारू मोहल्ला पहला कर पहला चौप दे

उटारे। जो जो नाम जपे अपराधे सब दिन के दोग पर हरे। बेस्वार वत अजामल उदर्यो मुख बोले नारायण नर हरे।

सिद्ध समाध जप्यो लिवलाय साध कमन जपया जति सति संतो की त्याया मुकुंद राधक रवैया सन पर

मेरे मंत नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुदानी गुर पुरख पुरख मिलाए ब्रह्म सुरत सुरत समाणी वड़पागे गुर

जी हर्षो प्रसन्न हो मेरा स्वामी हर्ष मृत मल्ला जापे जियो माया मोह बिकम पारी क्यों तरिय दुतर संसारी।

प्रभु होई जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाए पावे जियो मारु महला चौथा

मेरे ठाकुर कहते अगंत धारे मोय दीन अलप मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहो बाल्मीक सुविचारो तरयो बदक तरे बेचारे एक निमक मन माय अराध्यो गज पद पार उतारे।

काय सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी हो संत सहाय पावन पतद किय किन पितर मैं मकत न जाई।

सेवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिलको कमन गाव सरे छोड़ जाए कन पितरता को उआ को फिर फिरता अवसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सरे बैरी संग रंग रस रचया तस्यों जीरा जार सरे राव

ब्रह्मचार ब्रह्मचज की ना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए के तीर्थ परम्यो उसमें क्रोध बेगाना कुंगर बांध पाए रामदासा रोटियन के यो पावा बर

अपने जचना नानके पूर्ण सुख दाते तू दे राम संभालिए मारू मोहला पंजवा बिरके हेड़ सब जनत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त अदोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिरजन हार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ बंजे सहा करण करीम न जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लेंदा वत पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर अगली गल न जानिया जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाए प्या दे सलमै जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाए प्या दे सलमै जिन कीता तिसे न जानी अंधा तां दुख सहे पराणिया खालक थावो भुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत न मिलियो वत्ते आपन पाणिया मौला खेल करे सब आपे एक कड्डी एक लहर व्यापे ज्यो नचाहे त्यो त्यो नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे तां खसम त्याई संतां संगत नरक ना पाई अमृत दान नाम नानक कह गुण गीता नित वखाणिया मारू सोल हे मोहला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद साचा सा सोई अवर न कोई जिन सिरजी तिन ही फन गोई ज्यो भावे त्यो राखो रहना तुम स्यो क्या मुकराई हे एक उपाए एक आप खपाए आप

दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जा हाउ करी न होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ।

गावन तुदनो चेत गोपत लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे।

0: केसा सने सरती सारी खोपरी
1: केसा सने सरती सारी खोपरी
0: रंबी नाल यो रंबी

0: चढ़ के जदों भी संगते है हंकार बोलदा
1: आखना सियाने ओनू परमात्मा मिट्टी विच रोलदा
0: बंदे सिर चढ़ के जदों

जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं ओदद, जल केवल जल माही। पावन पवित्र अंग 657। वाहिगुरु जी का खालसा।

उन संग मोहि उधार। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमर है जिन आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन

अथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मन उहा नाम तेरा संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आगावै जेह मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन

बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए।

वै महा उदास तपि सरथी वै अगन माहे होमत प्राण कनक असव हैवर भूम दान न्यौली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच कर

जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जमका पहु व्यापै, अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापह माया जाल। अवर करतूत सगले जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुपाए।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझह प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बखस लेहो तौ नानक सीजै जह प्रसाद धर ऊपर सुख बसह सुत प्रात मीत बनता संग हसह जह प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जह प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ लिहो प्रव्यापे आद अंत जो रखन हार तिस स्यो प्रीत

डोरा निस कहिया तो समझै पोरा कह बिष्णु पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सो आवै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवै मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान

अनकपात माया के हेत, सरपर होवत जान अनेत, बिरख की छाया से रंग लावै, ओह बिनसै ओह मन पछतावै, जो दिसै सो चालनहार, लपट रहे हो तह अंध अंधार।

मिथ्या रथ हस्ती असव बस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौ हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनसवाद, मिथ्या चरण पर बकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लये। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन

जस कहै, जह प्रसाद सुन है कारण नाद, जह प्रसाद पेख है बिस्माद, जह प्रसाद बोले अमृत रसना, जह प्रसाद सुख सहजे बसना, जह प्रसाद हस्त कर चल है, जह प्रसाद संपूर्ण फल है, जह प्रसाद परम गत पाव है, जह प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ कौ मूल ना मनो बिसार, जह प्रसाद

प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्ब निदान प्रभ तेरी मया, आप हो कछु न किन्हू लया, जित जित लाव हो तित लग है हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए, सुनमीता नानक बिनवंता, साध जना के अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान, साध कै संग बुझै प्रवनेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरनै कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस स्यो नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुरदेवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग ईहा ऊहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद ना जान है, जेता सुन है तेता बखयान है, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची,

नानक ज्यो पावक का सहज सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर उपर आकास। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख

देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्शास्त्र।

अमर भये साध साध ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है, अपने जन कौ सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी। करण करावन करना जोग, ज्योतिष भावै सोई होग, खिन मह थापो थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै ता पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै, प्रभ भावै ता पतित उदारै, आप करै आपन बीचारै, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसकै हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मह रचै, जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दह दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मह नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बखसीस, ताका लेखा नागनै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोए फुन थियो, कबहु ऊच नीच मह बसै, कबहु सोग हरख रंग हसै, कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहु ऊब आकाश पयाल, कबहु बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहु निरत करै बहुपात, कबहु सोए रहै दिन रात, कबहु महाक्रोध विकराल, कबहु सर्ब की होत रवा।

ज्ञान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहु कीट हस्त पतंग होय जिया, अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। कबहु साध संगत इह पावै, उस अस्थान ते बहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन।

अष्टपदी। जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन, जो जाना मैं जो वनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन परमावै। धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै। धनवंता होए कर कर बावै, तृण समान कछ संग न जावै। बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए बिनास। सब ते आप जानै बलवंत, खिन मह होए जाए पसमंत। किसै न बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करै हौ तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै, तिसै भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जानै मुझते कछ होए, तब इस को सुख नाही कोए। जब एह जानै मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारै को बैरी मीत, तब लगने चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै। सहस खट्टे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिख्या के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बडभागी किसै प्राप्त होए। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ का विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हु कह संग। बुझै देखै करै विवेक, आपै एक आपै अनेक। मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेशै समझै आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करनै हार। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर एकै सोए।

पदे मानुख की टेक ब्रिथी सब जान देवन कौ एकै भगवान जिसकै दिया रह अगाए बहर न तृष्णा लागै आए मारै राखै एको आप मानुख कै किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिनसै सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा बड़भागी ते जान।

तन मुख बोल है हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाना, इत उत की ओह सो जी जाना। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओह हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ मह सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है ना लाग है दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सोहिला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सो दत सो दत सो दत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करै। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रव जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिनमंत। प्रव के सेवक सगल उदारण, प्रव के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनों कृपा करह बड़ भागै।

तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइयै, पुरब लिखे का लिखिया पाइयै। दुख सुख प्रभ दे बनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कछ करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरह अजान। कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे मह तोल। लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। एहो वापार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार। चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इसनान, साध ऊपर जाइया कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाइय। अनक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै। ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक कौ जीवा लनहार, भूखे कौ देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किछ तिसका ओ करण जोग, तिस बिन दूसर होआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल एह करणी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थी।

सच करणी सच ताकी रहत सच हिरदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ता साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ते परै नाही किछ कोय सर्ब निरंतर एको सोय आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बखसंद। साद तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ।

अनद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनी है घर ताकै राज मह राज जोग मह जोगे तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगे त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत ना पाया। जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरो

बीस विश्वे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी एका दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जान जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस स्यानप लया ना जाइय नानक ऐसा गुर बडभागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिसलय मिलाए जेह बा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किना ना पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होय उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग ना लेप मन मह राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाड वरताई अनद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चूका निर्भौ होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओहे कला तार जिन सगली मोहे अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चालै बिन भजन बिख्या सगली छार हर हर नाम कमावना नानक एहो धनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ एहो धन संच हो वह भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख हो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन कौ चार कुंट उठता वह सो धन हर सेवा ते पाव है जिस सुख कौ नित बाछह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा कौ करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी अनक उपावी

फिर जाप अष्टपदी जब अकार इहो कछ न दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसह व्यापत जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सकत कहो हो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख कवन तृप्तावै करन करावन करन हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला आपह प्रवीण तह वेद कतेव कहा को चीन जब अपने आप आप उतारै तव सगन अपसगन कहा बिचारै जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानहु आप जह अछल अछेद अभेद समाया उहां किसह व्यापत माया आपस कौ आपे आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कौ आपे पहुचा जह आप रचो प्रपंच अकार।

आया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देख्या जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बह संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोलै आप अडोल न कबहु डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल ना पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जा की ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद भरम का नास नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करण करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पी ओहि नानक दर्शन देख सब मोहि आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगले उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मद अलिप तो रह जो किछ कहना सो आपे कह आग्या आवै आग्या जाए नानक जा पावै ता लय समाए इस्ते होय सो नाही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतनीकी आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक यो जान जो जानै तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुवाओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन कौ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लै रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सह सु सियाणपां लख हो है ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म लै वडियाई हुक्मी उत्तम नीचा हुक्म लिख दुख सुख पाई है कना हुक्मी बगसीस है हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमे कहे ना कोय गावे को तान होवै किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइया चार

कथना कथि न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर काहि काहे हुकमि हुकम चलाए राहु नानक बिग सेवे परवाहु साचा साहिब साच नाय पाख्या भाउ अपार आखह मंगह देहे देहे दाद करे दातार फेर के अगे रखिया जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर नानके वह जानिए सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख घर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गोरी सर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जित सुभावा विन पाणे के नाय करी जेती सिरठे उपाई वेखा विन करमा के मिले लई मात विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा ना उरखाए कह जस कीर्त जागले जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के कीटा अंदर कीटकार दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरतवल आकाश सुनया दीपलो पाताल सुनया पोय न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सलाहन मंद सुनया जुग जुगत तन भेद सुनया सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठसठ

कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए कागद कलम ना लिखण हार मने का बै करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै सुरत होए मन बोध मनाए सगल भवन की सोध मनाए मोह चोटा ना खाए मनाए जम खे साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक न पाए मने पत स्यों प्रगट जाए मने मग न चले पंथ मने धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै पावे मुख द्वार मनै परवारे साधार मनै तरे तारे गुरसिख मनै नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरेग ध्यान जे को कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार तबले उपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते भारत ले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम।

पाठ पुराण आखे पढ़े करे बुखियान आखे ब्रह्मे आखे इंद आखे गोपीता गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मन जन सेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे ते कीते होर करहे ताख न सके केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बगाड़ तां लिखिए सिरगा वारां गा वार सो दर केहा सो घर केहा जित बहे सर्ब संभाले।

फूल राजा है बैठा कौ सिमट भव शंकर या कैठा सगरी सुर दुखाय चंप आजगा सुरु सुजम पाव ब्रछा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुड़ जिते उठवा तिद पाता सगल मिलेच करो रण काता जी अस तुझ ताव सरणी परे तिनके दुड़ दुखता मराय पुरख जौन पग परे त्योहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है।

सकलवसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सत गुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सत गुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा।

दसवें पातशाही साब थाई हो सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां

असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिर आहे, असंख मलेश माल पख खाहे, असंख निंद

नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लखो हे लखो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़िया।

प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध

अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कह नानक इहो आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे बेचारिया एक भरम भूले फिरे दस दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना पाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जन पावै आवो हो संत प्यारे हो अकत की करह कहानी करह कहानी अकत केरी कित द्वारे पाई है तन मन तन सब सौंप गुर कहो हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्या हो गुरु की रागा बहु सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथियो अकत कहानी ए

मन जान अमृत खोजते सो अमृत गुरते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तो दे उपाय एक वेख पर सुन आया, लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। खन्यो तिखी बालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग नराली, ज्यो तू चलाए तिव चला स्वामी होर क्या जा।

हर हर ते आया करमी सहज न उपजै बिन सहजे सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो बहो शब्द।

जाए, गौरमुख जिसनो आप करे सो होवे, एक स्यों लिवलाय कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाजाओ तत्तै सार न जानी, तहे गुणी संसार भ्रम सुता सुतियां रहण बहाणी, गुर कृपा तेसे जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोला है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए, जिसनो आन दिन हर लिव लागे जागत रहण बहाणी, माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया ये बड़दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे, ओसनो के पोहे न सके जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिवे आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक ए बड़दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब को जे ही करता है खेल रचाया, जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, एह माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए।

जिन्ना सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसां सुवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमा

कृपा करनी पातशाह जी समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल चुक दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे परिवारां दे हिरदे ते वसाउणा। सच्चे पातशाह जी एक श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा भाई जसपाल सिंह सुखजीत कौर समूह ढिलों परिवार वालों सच्चे पातशाह जी अपने बच्चों की मनोकामना पूरी होने ते सच्चे पातशाह जी आप दा शुकराना करदिया होया करवाई गई है। कृपा करनी पातशाह जी मेरा प्रयाथ रखना समूह परिवार नूं देह रोगता चढ़दियां कला बख्शनियां किरत कमाइयां विच बरकत।

मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले।

शहादत के होते हैं फौजी ना छोड़ देते हैं, जिंदगी को खिलौना समझ के खुशी से फोड़ देते हैं। ना ताजो तख्त की हसरत ना हूरों की बालम, अगर खुदा खुदाई भी दे तो